WorldLink को फेस्टिविटी ऑफर अब पाउन होस्ट एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेशनल नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेटअप बॉक्स मात्र ₹1200 प्रति महीना में शर्तहरू लागू होने छन् छिटो बने गई WorldLink।

कामना सेवा विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो डोर स्टेप बैंकिंग विशिष्ट खाता हामी कामना सेवा कामना सेवा विकास बैंक को विशिष्ट बचत खाता नेपाल को पहिलो डोर स्टेप बैंकिंग

0: तू अभी तक रेडी नहीं हुई?
1: क्या फायदा, वो तो आ ही नहीं रहा है।
0: तू अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में ऐसे जाएगी? खुश हो जा, वो आ रहा है और तेरे लिए एक सरप्राइज है। तू झूठ बोल रही है।
2: सच्ची।
0: अब मैं दिखाती हूँ उसे सरप्राइज क्या होता है, देखती जा।

0: WorldLingo festivity offer अब पाउन होस्ट एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेशनल नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र रु 1200 प्रति महीना में शर्तहरु लागू होने छन् छिटो बनेकै WorldLingo
1: दमोलिया FM 94.2 समुदाय को आवाज।

0: 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्निचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचर किसान हार्डवेयर को पछाडी पट्टि रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलाङ, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
3: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ।
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 056 5, 98 19 11 36 27,